0: संत के दुख नार जा कटे,
1: संत के दुखन जमते नहीं छूटे,
0: संत के दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नरक में पाए,
0: संत के दुखन मत होए मलीन,
1: संत के दुखन सो बाते हीन,
0: संत के अते को रखे न कोए,
1: संत के दुखन थान प्रस होए,
0: संत कृपाल कृपा जे करे,
1: नानक संत संग निंदक भी करे,
0: संत के दुखन ते मुख पवे,
1: संतन के दुखन काग जो लवे,
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए,
1: संत के दुखन त्रिल जोन कर माए,
0: संतन के दुखन

0: जाने
1: सो क्यों मिसरे जिन सब कुछ दिया
0: सो क्यों मिसरे जे जीवन जिया
1: सो क्यों मिसरे जे अग्न में रखे
0: गुर प्रसाद को बिरला लाखे
1: सो क्यों मिसरे जे

त्रिपतास मिल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास, रा गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चितवें उदम।

तुझ जी हर अनक अनेक अनंता, तेरी अनक करे हर पूजा जी, तप तापे जपे बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बहु सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता।

विचार अपना जान मुझे प्रत प्रिया चुन चुन शत्रु हमारे मरिया देख तेग जग में दऊ चल राखा मह और ना दल तुम मम करो सदा प्रतपार तुम साहिब मैं दास तिहार जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दा जान कर कृपा करो मोहे हार परामयान द्वार तोहे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दा जान दे हाथ उबारो हमरे सब ऐरियन संगारो प्रथम तरो भगवत को ध्याना बहर करो कविता बिदनाना किशन जथा मत चरित्र उचारो चूको कबले हो सुधारो कबे बाज दोहरा जो निज ब्रह्मो सो कहा सो कहे हो जग माहे जो ते प्रभ को त्याय है अंत

सहाय पंथ चलाए तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान गौ नितुड़ त्याय है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान दोहरा काल पुरख की देह मोह कोटक विशन महेश

तेरे दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुवारना, सबना गल्ला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो में सारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा है, करता तेरा सब कुछ है, जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे नाम जिन कह मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब, क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया।

पौड़ी जिथै तू समरथ जिथै कोई नाहे उथै तेरी रख अग्नि ओ द्रमाहे सुनकै जम के दूत नाहे तेरा छड़ जाहे भौ जल बिखम सगाह।

इतनी सेवा प्रवान करने जी कितने करदा प्रजा दी माफी बख्शन भाई साहब अगत सिंह जी आप जिन पत्र बाणी कथा राही जोड़न दी उन्हां पास इतिहास का सरण करो जी। अज तो दवांत विशाम तो भाई साहब भाई पिंद्रपाल सिंह शुक्रवार तक कथा लई हाल जी पर 8 to 9 समा होएगा। सारे दवाना चो अज पर प्राप्त करने जी हम कथा राही जुड़ना करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

परम सम्मान योग चुकू चुक अटल चावर शतर तख्त दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साध संगत जीओ आप सारे वड़भागी हो तंता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ शाम दे दीवाना विच जो लड़ीवार विचार चल रही है ओ विचार आपा सांझी कर सकीए। अज 7:20 तक अपना समा है, फिर 8 तक गुरु घर के महान कीर्तनीए वो कीर्तन राही नियाल करनगे, उपरंत 8 तो लैके 9 तक सिख कौम के महान विद्वान यानी पिंदरपाल सिंह जी वो सारिया संगतां नूं निहाल करनगे। सो जिन्ना कु समा अपना है उस समय विच रहिंदिआं आपां विचार सांझी कर सकीए। विचार आरंभ करन तों पहलां सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल आपां विचार सांझी कीती सी अंतर नावण साच पछाणे। जे परमात्मा नूं पछाणना है, परमात्मा नूं जानना है, परमात्मा नूं समझना है तो फिर आत्मक इशनान करना पड़ेगा। जे अपने जीवन नूं उच्चा ते सुच्चा बनाना है तो फिर आत्मक इशनान करना पड़ेगा।

0: सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी दी अमृत बाणी दे अर्थ करदिआं कथा विचार करदिआं होईआं बेअंत फुल्लां साध संगत जी बख्श देणीआं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन्नवाद इहां साढ़े पंथ के महान कथावाचक भाई पिंदरपाल सिंह जी जिन्हों का अज इत पहला दवान सी, चार दवान होर बाकी हैं। सो सारिया संगतों को निम्रता सहित बेनती है कि आप अपने परिवार समेत चार दवाना की हाजरी जरूर भरो, वध तो वध गुरबाणी का फायदा उठाओ। बहुत धन्यवादी हाँ। आओ इस तो उपरंत आनंद साहब सरवण होगा तो दवान की समाप्ति होगी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
2: सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी। रामकली महला तीजा आनंद एक ओहकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया सबद गावड़े आईया सबदो तां गावहो हरी केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सब ना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनहु विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कह मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विठहो जिस दिया एह वड्याइया कह नानक सुनहो संतहो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कुमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कहो से नाम हर कै लागे कह नानक तै सुख होआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो बडभागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुरचरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुरचरण लागे वाजे अनहद तूरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचै धर्म हदूर करमी आपो आपणी के नेड़ै के दूर जिनी नाम त्याया गे मुसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम त्याया गे मुसक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु,

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

नमः अष्टपदी सिमरहु सिमर सिमर सुख पावो काल कलेह तन माह मिटावो सिमरहु जात विसंपर एक नाम जपते अगंते अनेक भेद प्राण सिमरत सोदा।

काखिए कै दर्स तुहारो नानकुन संग मोहे उधारो सुखमनी सोखे अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै

दिन जागे प्रभु कै सिमरन भव ना व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख ना संतापै प्रभु का सिमरन साध कै संग सर्वदान नानक हर रंग प्रभु कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नव निध प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु कै सिमरन जप तप पूजा प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभु कै सिमरन तीर्थे स्नानी प्रभु कै सिमरन दरगह मानी प्रभु कै सिमरन होए सुपला प्रभु कै सिमरन सुफल फला से

जाए। प्रभ कह सिमरन सब कह सुजय। प्रभ कह सिमरन नाही जम त्रासा। प्रभ कह सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कह सिमरन मन की मल जाए। अमृत नाम रिद माह समाये। प्रभ जी बसह साध की रसना। नानक जन का दासन दसना। प्रभ कौ सिमर से तनवंते। प्रभ कौ सिमर से पतवंते। प्रभ कौ सिमर से जन प्रवान। प्रभ कौ सिमर से पुरख प्रधान। प्रभ कौ सिमर से बेमोहताजे। प्रभ कौ सिमर से सर्व के राजे। प्रभ कौ सिमर से सुखवासी। प्रभ कौ सिमर सदा विनाशी। सिमरन ते लागे जने आप दयाला। नानक जन की मंगैर वाला। प्रभ कौ सिमर से परोपकारी। प्रभ कौ सिमर तन सत बलिहारी। प्रभ कौ सिमर से मुख सुहावे। प्रभ कौ सिमर तन सुख बिहावे। प्रभ कौ सिमर तन आत्म जीता। प्रभ कौ सिमर तन निर्मल रीता। प्रभ कौ सिमर तन अंध कनेरे। प्रभ कौ सिमर बसे हरनेरे। संत कृपा ते अनदन जाग। नानक सिमरन पूरा भाग। प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे। प्रभ कै सिमरन कभ न चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुणवानी। प्रभ कै सिमरन सह समानी। प्रभ कै सिमरन निहचल आसन। प्रभ कै सिमरन कमल बिंगासन। प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार। सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। सिमरह से जन जन कौ प्रभ मया। नानक तिन जन सरणी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए। हर सिमरन लांग बेद उपाय। हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते। हर सिमरन नीत चहु कुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना। सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल कारा। हर सिमरन मह आप निरंकार। कर कृपा जसा बुझाया। नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर दुख पंजना। घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो। नानक प्रभ साथ अष्टपदी। जह मात पिता सतमीत ना पाई। मन ऊहा नाम तेरा संग सहाई। जह महा भयान दूत जम दलय। तह केवल नाम संग तेरा चलय। जह मुश्किल होवे अत भारी। हर को नाम खिन माहे उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरे। हर को नाम कोट पाव पर हरे। गुरमुख नाम जपो मन मेरे। नानक पाव सुख नेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया। हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोरी बंधन परे। हर का नाम जपत निस्तरे। अनक माया रंग तेख ना बुझावे। हर का नाम जपत आगावे। जिह मार्ग एह जाते अकेला। तह हर नाम संग हो तु सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्याई है। नानक गुरमुख परम गत पाई है। छूटत नहीं कोट लाख बाही। नाम जपत तह पार पराही।

मुखस्तानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाथ नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपे हर

संत दर दुख लथा नाम की मैं मह संत रिद वसै संत प्रताप दुरत सब नसै संत का संग विडभागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है।

नानक बोले सैसु पाए। चार पदार्थ जो को मांगे साधना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदंगावे। जे

मिथ्या तन धन कुटम सवाया मिथ्या होमय ममता माया मिथ्या राज जोबन धर्म माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती असभ्यव मिथ्या रंग संग माया पेखस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या शिव प्रकृत गुमान अस्त्र भक्त साधकी शरण नानक जाप जाप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने है मिथ्या हस्त पर द्रव कौहिर है मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रय रूपाद मिथ्या रसना भोजन सुहाद मिथ्या चरण पर विकार कोतावे मिथ्या मान पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पर विकार मिथ्या बाह नेत विकार बिन बूझे मिथ्या सब पै सफल देह नानक हर हर नाम लय।

अस्त परि तेह प्रसाद शतीह अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे जिह प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस कौ सिमरत परम गत पावे जिह प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे ध्याय सदा मणे अंदर जिह प्रसाद गृह संग सुख बस नाड़ पैर सिमरो तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है ध्यावन जोग जिह प्रसाद पाड़ पटंबर हंडावे तिसे त्या कतबर लुभावे जिह प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर ताका जा सिंह भी जय जिह प्रसाद

तू तुम होए सर्व संधान प्रभु तेरी माया पो कछु न किन लाया जित जित लाभ तित लगे हरनाथ नान किन के कछु नाथ सलोक अगमे अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिरवंता।

दांत पर पूर्ण विवेक काहु बोल न पहु चित प्राणी अगमय गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकी कीमत कने न पाई अनक भगत बंधन नित कर है अनक भगत बंधन नित कर है चरण कमल हृदय सिमरै

असंख नाम असंख थाम अगम अगम असंख लो असंख है सिर पार हो अखरी नाम अखरी सारा अखरी ज्ञान गीत गुणगा अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग बखाण जिन ए लिखे तिसर नाहे जि फुरमाए तिप तिप पाहे जेता कीता तेता नाम बिन नाम है नाही को थाऊ कुदरत गमन गहां भी चार बार या ना जावा एक बार जो तो दपावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार पर यह हाथ पैर तन देहे पानी धोतै तो उतर सोखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लइया ओ धोए पर यह मत पापा कै संग ओ तो पै नावा कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे भी जापे ही खाहो नानक हुक्मी आब हो जाहो तीर्थ तप दया तदान जे को पावे तिलका मान सुनिया बनिया मन कीता भाव अंतरगा तीर्थ मल्लाहो सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वस्ताद बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ

श्री सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़नर कीसर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मनमोहन सुरगा माश पयाले गावन रतन पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावे जोत महाबल सूरा गावे खाणी चारे गावे खंड मंडल पर भंडा कर कर रखे तारे सही तुदनु गावे जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले और केते गावन से मैं चेतना आवन नानकिया विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी हो सी जाए ना जासी रचना जन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जनसी माया जन उपाई कर कर वेख्याय किता आपना जेव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो बादशाह शाह पात साहिब नानक रहन रजाई मंदा संतोख सरंबत झोली

अलीक है, दिल शरीक है, दृढ़ है, असंभ है, अगम है, अजाम है, अभूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अभीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयात छंद। नमो सर्वमान्य समस्ती निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपौणे, अनंगी अनाथेन्द्र संगी परमाथे, नमो भान भाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो भान भाने, नमो गीत गीते, नमो तान तान, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नाथे, नमो पान पाने, नमो बाध बाधे, अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रभंगी परमाते समस्ती विभूते कलंगंग मनाले कलंगी स्वरूपे, नमो राज राजेशन परम रूपे, नमो जो जोगेशन परम सिद्धे, नमो राज राजेशन परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाने, नमो अस्त्र माने परम ज्ञाता, नमो लोक माता

पूर्ण पुरुष अपार सर्विश्व रचियो स्वयं भवगण पंजनहार कालहीन कला संयुक्त काल पुरुषा देश धर्मताम सुपरमरा भूतलाखा पेश अंगरा अंगरा रंग जाके जात बाधना नाम गर्भगंजन दुष्ट पंज।

सर्वत्र राजा है, कि सर्वत्र साजा है, कि सर्वत्र दीना है, कि सर्वत्र लीना है, कि सर्वत्र जा हो, कि सर्वत्र पा हो, कि सर्वत्र देसा है, कि सर्वत्र पेशा है, कि सर्वत्र काल है, कि सर्वत्र पाला है, कि सर्वत्र घंता, कि सर्वत्र घंता, कि सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र पेखी, के सर्वत्र गाजा है, कि सर्वत्र राजा है, कि सर्वत्र सोख्या है, कि सर्वत्र पोखा है, कि सर्वत्र तराण है, कि सर्वत्र प्राण है, कि सर्वत्र देसा है, कि सर्वत्र पेशा है, कि सर्वत्र मान है, सदैव प्रधान है, कि सर्वत्र जाप है, कि सर्वत्र थाप है, कि सर्वत्र भान है, कि सर्वत्र मान है, के सर्वत्र इंद्र है, के सर्वत्र चंद्र है, के सर्वंग कलीम है, के परमंग फहीम है, के आकल अलाम है, के साहिब कलाम है, के हुसन वजू है, तमाम रजू है, मेसुल सलाम है, सलीकत मदाम है, गनीमल शिकस्त है, गरीब परस्त है, बिलंदुल मकान है, जमीनुल जमान है, तमीजुल तमाम है, रजुल निदान है, हरीफुल अजीम है, रजायक यकीन है, अनेकुल तरंग है, भेद है, अभंग है, अजीजुल निवाज है, गनीमल खराज है, नृक स्वरूप है, त्रमुक्त विभूत है, प्रभुक्त प्रभा है, सुयुक्त सुधा है, सदैव स्वरूप है, भेदी अनुभ है, समस्त पराज है, सदा सर्व साज है, समस्त सलाम है, सदैव काम है, द्रभा स्वरूप है, अगाध है, अनुभ है, ओंगा स्वरूप है, अनाज स्वरूप है, अनंगी अनाम है, त्रिपक्की त्रिकाम है, नृभंगी स्वरूप है, सर्वंगी अनुपे, त्रिभंगी त्रिकाम है, त्रिभंगी त्रिभरगम त्रिभादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभाग्य सुसर्भा अनुरागे त्रिभुक स्वरूप है, शुजय शूत है, के नरकंग प्रणास है, प्रथुल प्रवास है, नृत्य प्रवाह है, सदैव स्वरूप है, भेदी अनुभ है, समस्तो पराज है, सदा सर्व साज है, नृत सुधा है, विभुक्त प्रवाह है, अनुक स्वरूप है, प्रयुक्त अनुप है, चाचरी छंद अपंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, परम है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है,

कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर इकट्ठा। सगरी सृष्टि खाए अचंभव आजुगा, स्वरूप स्वयं भव रक्षा मेरी तुम करो। सिख उबार आ सिख संगरो, दुष्ट जते उठवत उत्पाता। सकल मलेश करो रण कहता, जे आश तो जता विसरणी परे। तिनके दुष्ट दुखित हवे मरे, पुरख जम पग परे तिहारे। तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते आए है। ताके काल निकट न है, रक्षा वे ताहे सब काला। दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दुष्टन जाय रे हर हो। ताके ताप तनक मैं हर हो, रिद सिद कर्म सब हो। दुष्ट शवा सके न कोही, एक बार जन तुम्हें संभारा।

दोए कुतर साजे कर असी डिठो जाओ दाता करताप तू तुस्ते वह करे पसाओ तू जाना सबसे दिल ऐसे जिम कवाओ कर असी डिठो जाओ कर असी डिठो जाओ।

कान कृष्ण जातम भया पार जात गोपी लै आया बिंद्रावन महरंग किया काल मैं वेद थर्बन हुआ आ नाउ खुदाई अलहो भया नील बस

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वा

सुख रस सद खुशियां कर तन जपना जिसका कर्म लिखिया तुर करत नानक जन के पूरन काम सर्व मनोरत राज सुख रस सद खुशियां कर तन जपना

0: राष्ट्रपति
1: सिमरो सिमर सिमर सुख पावो
0: काल कलेश तन मन मिटावो
1: सिमरो जासव संभरे एक
0: नाम जपत गणत हरि के
1: वेद प्राण सिमर सोदा

0: सिमरत कछु बिघन न लागे,
1: प्रभु के सिमरन अंजन जागे,
0: प्रभु के सिमरन भउ न व्यापे,
1: प्रभु के सिमरन दुख न संतापे,
0: प्रभु का सिमरन साध के संग,
1: सारन दान नानक हर रंग,
0: प्रभु के सिमरन हृदय सज नौनिद,
1: प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध,
0: प्रभु के सिमरन जप तप पूजा,
1: प्रभु के सिमरन मिटसे दूजा,
0: प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी,
1: प्रभु के सिमरन दरगह मानी,
0: प्रभु के सिमरन हो